0: चाय
1: खाली करैत रहै छी, भरि गाम घुमि अबै छी, अंगनामे आबि कऽ चाय करऽ लगै छी।
0: नहि यै, पहिले तऽ अहाँके हम गुलाब लागै छलहुँ, आब खराब भऽ गेलहुँ।
1: हाँ,

0: यार बड़ा ही टाइम हो गया, आज तक कुड़ी आई नहीं।
1: आई थिंक यू शुड आस्क हर आउट एंड क्लियर योर डाउट।
0: अज तक डाउट क्लियर करके छड़ना है।

मुझे अपना बना लो रणबीर, इतना अपना कि तुम्हें मुझसे कोई दूर ना कर सके। थक गई हूं मैं इस अकेलेपन से, तो अकेले रहने के ख्याल से भी डर लगता है।

0: चल चल
1: एक मिनट फिर मैं
2: यार बहुत देर कर दी है
0: यार, आपने देर कर दी है किधर से
2: यार, मैं तो आ रहा था तुम सेल्फियां ले रहे हो यार, चलो बैठो यार जल्दी करो पहुंचना है।
1: क्या हाल है
3: जान जाना ढूंढे तुझे दीवाना।
0: क्या गा रहे हो भाई?
3: यार एक बहुत पुराना सॉन्ग है वो गा रहा हूँ।
1: क्यों रीमेक कर ले? डन,
0: गुड आइडिया, डन।

0: के यहाँहरू हाम्रो एफएम मार्फत आफ्नो व्यापार व्यवसाय सङ्घ संस्थाको प्रचार प्रसार गर्न चाहनुहुन्छ? यदि चाहनुहुन्छ भने हामीलाई हाम्रो मोबाइल नम्बर 9851450064 वा 9818744490 सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ।
1: मुन्ना मुन्ना माइकल नाम है मेरा। तीन बत्ती में किसी से भी पूछेगा ना तो हाथ पकड़ के घर पे छोड़ेगा।

0: ये कहां से आ गई?
1: अरे सर जी, लास्ट मिनट पे रशियन डांसर डॉलर डिमांड कर रही थी सर जी, ये तो रुपीज में आ गई।
2: सॉरी सर जी।